त्रिपवन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जागत ज्योत जप निसबासुर एक बिना मन नयक न आना

0: चातुर चक्र वर्ती चतुर तंत्र भुगते स्वयं शुभंग सरदार संयुक्ते दुकाल प्रणासे दयाल स्वरूपे सदा संगे आभंगम
1: देखते गुप्त अनुसरण तया भगवान गुरु गोविंद सिंह श्री काल प्रतिशाय दरबार में तेरे दरबार

पान हरि छेद हरि भेद हरि जंत्र हरि मंत्र हरि सो तेज हरि तंत्र हरि अजात हरि पाद हरि मित्र हरि मात हरि रोग हरि शोक हरि भर।

प्रसाद भजन प्रसाद छंद नरा रंग रूप नर रंग मोहन नगर मधुर मधुर मोहन नगर मोहन नगर मजन मगन जन नगर मित्र मगर तंत्र मित्र जन मगर मित्र मित्र मित्र मित्र नने हम नगे हम काम न धाम न बुद्ध नगे मित्र न समग्र न भाव न गले कन न फेर कन सजो नि सरो बंग सर दस न गले बुद्ध तब मित्र रूप न तब मित्र तब बुद्ध नहीं जान जाए जो रूप रे कन ही बान जाओ के बिल रूप रे देख न कथा बान बताओ के कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर नारायण रंग न रूप देखन लोमन चोभन बोधन देखन रूपम मित्रम नेहम नमे सदैव सदा सर्व सर्व नेहम सदैव सदा सर्व पुत्र नेहम नमन रूपम लोमन मोहन जवनी ने चोखा न रूप राज मोहन जवनी ने मन न करद बन बिदन रूपम सुगन बहन रूपम खादन रूपम सुगन बहन खादन छेदंग वेदंग कर्मंग कालंग छेदंग वेदंग कर्मंग कालंग कर्मंग मरणं जातं मगायं नेहं नेहं भरतं भायं नेहं नेहं भरतं भायं रूपं रूपं नकायं कर्मं नरासं नरासं नवेदं नकर्मं सदासं सदासिदं नवेदं नरूपं नमोदे गुरुपं नमोदे गुरुपे कहूँ अच्छ के बद के सिद्ध साधे कहूँ अच्छ के बद के बदला दे कहूँ अंग के रंग के संग देखे कहूँ

छूत मतंगन गाद प्याद नाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भू वंजन गंजन आद सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम्पद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सुत सिंधु अधो मुख ताप तप कई गल्पन लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा नित पान पर जय फोकट धर्म सभ तज है एक चित्त कृपा नित को जप है।

अनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्वसत है। अनाथ नाथ नाथ है, भंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता। अनूप रूप स्वरूप है, छिज तेज मानिए, सदैव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पत्र जानिए। नराग रंग रूप है, नरोग राग रेख है, अधोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म वेख है। न दात माद जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अधिक शेख भेख है, सदैव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमी जमान के विखे सदैव करम भरम है। अद्वैख है, अभेख है, अलेख नाथ जानिए, सदैव सर्व ठौर में विशेख अन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण कुरान नित नित के बतावई। न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न भाट है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए। मकीन व मकान अप्रमाण तेज मानिए।

गंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सूच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है।

गंज गंज गंज है, हूँ दबेग है बलिया रूप राग रंग है। न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है। बेअंत है अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है सदा छिज तेज मानिए। न आद न व्याध है अकाद रूप लिखिए, दुख है अदाघ है अक्षय प्रताप देखिए। न कर्म है न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है। न छल है न छिद्र है, न छिद्र

रूप राग ना रेख रंग ना जन्म मरण विहीन आदना तगत पुरख सो धर्म करम प्रवीन जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीड़ विखे बसे सब ठौर मैं निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात्र मित्र सर्व ठौर विखे रम्यो जय चक्र चिहन न चित्र आ देव दार मूर्त आद नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखात देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद गतेव सन गौ सन के सनंदन पाव ही न सेव जाछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत बुकार ही सेव सकर ओ मुखचार सर्व सपत बतार के तर जाप ही जय जाप आद देवा गाद तेजनाद मूर्त ताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे विराज धिराज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देव दानो न भ्रम क्षत्रियन माहे वैस रंग बिखे विराज सूद्र भी वहनाहे गुड़ गौड़ भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूम का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व संपत पतार के दर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फन पुनेत पूर्ण होत सोद सोद हटे सभा सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त थक महाकब गर्द गाढ़ अनंत हार हार कहे सबू मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखियो न सेवक देव देव दानो मूढ़ मानो जस न जन जेब भूत भव भवान भूपत आदनाथ अनाथ अगन बाजले

दुष्ट निकंदन आद प्रति जचरासन मारण पति धोधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मै खासुर मर्दन रंभ कबर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंडन पुष्ट उड़ंदन रूप अते चंडासुर चंडन बूंड विहंडन धूम्र

के बबर बांगे हुजाफरन के तेज वरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण धमके अस्सी झमके फुंग फनंग जय जय उसी मखा सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दाम नी दमंगण धुजा फलंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवरखन दुष्ट प्रकरखन पुष्ट प्रहरखन दुष्ट मथे जय जय हो सी मखा सुर मर्दन भूम आकाश तल उर्दय थे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धर्म प्रते श्रोणत चिंती अनल विवंती योग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मखा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोक निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्ट उपारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सत्य प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय उसी मेघा सुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हारन धूम धुंकारन द्रव मथे धाड़वी व्रतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मखा सुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे गुंगुरुख मंगण सहस्र झमंगण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाड प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी मखा सुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर्मन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन भृत मथे गावरु

संकटे निवारण अथम उदाहरण तेज प्रकार खंड तुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शोध तप समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होशी शास्त्र प्रकार खंड आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अथम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होशे रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज विलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोजन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज

गुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल विग भाजे सुख उपराजे मद उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रुझे सब नभज्जे रोहर नंग जय जय होशी मासुर मदन चंड चक्र धन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोस रोधन क्रूर विते धूमराज विधुंसन प्रलय विधुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन हाथ जुगाद अगाध गते खतरियाण खतंगी अभ अभंगी आद अनंगी अगाद गते ब्रिडलाज विहंडन च छुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पद दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होशे मैं खासुर मर्दन विश्व विधंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन तरना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रथर खंड पितल तले अष्टायद बाहन भूल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय होशे मैं खासुर मर्दन आदर नाद काध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग

अत्र के चलैया छिद्र छत्र के धरैय छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल हैं। दान के दिवैया महमान के बढ़िया अवसान के दिवैया हैं कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हो के मान है। ज्ञान हो के ज्ञाता महाबुद्ध दा के दादा देव काल हो के काल महाकाल हो के काल है। पूर बिना पार पाव हिंगुला हिमालय धैव घोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना के तेग बांधे अरब के अरब आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने पश्चम के पश्चिमी पछान निज काम है। मारा टाम गिरे तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंग वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रूहले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पूंज को मलत है। गोखा गुण गावे चिन मचीन के शीस ने आवे ते बद ध्याय दुख देह के दलत है। जिन्हें दोह ध्याय तिन्हें वूर्ण प्रताप वायो सर्व धन धाम फल हूल से फलत है। देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछ पहुँचत है चिट्ठी की जंघार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख जार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जच कहियत है। करत है विचार बैन पूर्ण को पावे वार्ता हिते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार वह अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी कह के मानी है। जंत्र हूँ न जात जागे बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सोचा के अनुमानी है। तेज हूँ कुतंत्र है के राजसी को जंत्र है के मुँह होने को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूँ को तर है राजसी को सर है शुद्धता को घर है सिद्धता की सार है। कामना की खान है साधना किसान है विरक्तता की बार है बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है भूपन को भूप है रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दादा है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छे बिनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है के नियमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हों के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता के बासी है। जोग हों को जंत्र है के तेज हों को तंत्र है के मोहने को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार वार हूँ को पार जगो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हब सिहल विधावे पूर्वी न पार वावे सत्यानाश है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धैया ध्रुम छाल के। कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसे छीरावत छाछ कैसे छत्रा नेर छपा कर कैसे छप कालिंद के कूल के। हंस निज सी हरुम हीरा सी हो सनाबाद गंगा कैसे धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सोर सी सुरंगाबाद नीके रही जूल के। चंदा सी चप्पा सी चंदेरी गोड चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हल बने हंस के सी हाजीपुर देख मोहियत है।
चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंद्रगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धर बकान सी बिलंदावाद गिरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फारासी फिरंगी फारासी के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गाइयत है भखरी गंधारी गोर गखरी गिरदे जचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाहु काम रूप कमाऊ सर्वठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दया ताबिनाथ की।